கல்யாணம் குரு பிரபு உடனவேகான நாம இன்னும் இருக்கு தாய் சஜாவுக்கு சுட்டியை சுத்தி பார்க்க சொல்லுகா तो गुरु का हुक्म नहीं मने आए तेरी को क्योंकि हुक्म हुक्म मालक की बख्शिश नाल जरा हुक्म देना रहमत भी ना तो हुक्म नहीं मनिया तो मैं जरूर मनना ये अपने आप रह जाएगा तो गुरु जान के तेरी सेवा ते जे भजे नसे गल तो सामने कोठी विच बंद भी कर देना मैं गुरु का हुक्म मनना भाई सज्जा उठिया तुरन लगा मैनू कौन है बंद करने वाला बुद्ध शाह ने मुरीदा इशारा किया इन्होंने पकड़ के भाई सज्जे कोठी बनकर बुद्ध शाह ने मेरा बाल बच्चा भुख नाल मर जाए बुद्ध शाह ने कहा नहीं जिन्हें हुक्म दिता है वो आपे रक्षा करेगा ये तेरे मन की कमजोरी की रक्षा करेगा बुद्धू शाह तो गन्ना बुद्धू शाह दिया सुन सुन गन्ना सिख धर्म जिगा बच आके मुश्किल नाल उठाया उसू और मुंह च पानी पाके कहता सतगुर यह की कीता मैनू उधर कैद पता के मेरा बाल बच्चा सब रुक के मर्जी कौन खिलाती जा बंद एक दिन बीतिया कुछ नहीं खादा थी दूजा दिन होया बुद्धू शाह ने किया सजे प्रसाद तक नहीं मैनू भुख नहीं तीजा दिन होया सोचे लगा मैंने बाल बच्चे तो भुख नाल मर गए होंगे तू भुखा क्यों मरना अगर सही रहो भुख बड़ी रान है भुख बड़ी पर्वत है फरीद ने कहा मौतों भुख मिली इंसान से कई बड़ी बड़िया बड़िया गलतियां कर मारे की लिखे दुख विछोड़ा एक दुख भूख एक दुख सब दुआ जमदूत एक दुख रोग लगे सन खाए व्याज न होने दा प्रसाद पानी छकन लग गया नौ महीने भी समा नौ बीत गया समय का पता ही नहीं ना ਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਸਕੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਦਿਨ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਲ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਬੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯੁੱਗ ਅੱਖੀਂ ਘੇਰੇ ਮਾਟ ਕੇ ਪਲ ਪਲ ਵੀ ਵਿਹਾਰੇ ਪਲ ਪਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਯੂ ਬੀਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਜੰਜਾਲ ਨਾ ਛੋੜੀ जब दिया जब हुआ दिन से पैर पैर से कड़िया जब उनके अंदर आव घटे पंखी जाए नौ महीने लै भाई सज्जा तेरे पौ पन मुकले हैं अज नौ महीने बीत गए हैं तू जा सकते भाई सज्जा तू जाओ किधर जाओ बाल बच्चा तो भुखना मर गया हूं कोई आसरा नहीं ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਆਓ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਬਚੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਚ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਕੇ ਮਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਗੁਰੂ नौ महीने की कैद दे दी मैं भी चल सही गुरु शाह ने कहा तो भाई सज्जा ये भी कोई राज है तू नहीं समझ मच्छी की जाने सागर के डा बैठा
ਪਾਣੀ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਸਾਗਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਦਰਿਆ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਪੜੀਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਤੇ ਪਰਖਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਪਰਖੇ। ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਪਾਣੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਦਰਿਆ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਸਕਦਾ।

मैं मछली कैसे अपना कैसे देखा तय तय को उनसे लिखती मच्छी पानी को बिछड़ी नहीं ये जीवन हो गया। गुरु का सिख जिस वेले गुरु ने हुक्म विच रहा है तो बख्शिश ही बख्शिश है, जिस वेले मनमत लिखा जाता है तेरे लगी आन होता है अपने पानी जो चले पाई सो बिछड़े जो मच्छी की जाने सागर के दम पंछी की जाने आकाश के दा वड्डा पाई सज्जास की जाने गुरु के दा वड्डा है मेहमान जाने दे वड्डे वड्डा पाक तेरा भाई सज्जा चला जा गुरु को ये विचार बनाया है ताकि चिट्ठी भी मेरी ले जाए जाके गुरु को देखे अरदास करी कदे मैं पापी से ही बख्शिश करे गुरु मैनू भी दर्शना दिता भाई सज्जे ने किया ठीक है गुरु साहब अगे गुरु की चिट्ठी तेरे को ले आया हां ते तो 9 महीने ढक दिता है ते जे तेरी पत्रिका लेके गुरु को चला गया गुरु 18 महीने ढक देगा उन्होंने की कर मैं भी जान चंगा भी तेरी मैं ख्याल है चलो मना अपने पिंड चलते शहर कोई बच ही गया हो तो भाई सज्जा अपने पिंड पर आया कि वेख्या जिथे कखा की चुनी सी उथे आलीशान मकान बनया बिर बिर पिया तक जे सुनामे ने टकिया सुनामे उत्ते भी यह समाया भगवान कृष्ण के सुदाम दोवें सुदीपर सुदीपर पढ़ते विद्या पढ़ एक दिन सुदीपर जी की घरवाली ने कहा बच्चे हो जी मां जी घर भी लकड़ा कोई नहीं लकड़ा लिया जंगल में दोवें सुर से संदीपन विखी की घरवाली ने सोचिया बच्चे हम जल्दी भी जा रहे हैं तो लगेगी सुदामे गल सुन को लै थोड़े जे छोले चने पोटली बंद दिते जिसने डांडी भुख लगे ये खा के ते पानी का घुट पी लिया चले गए लकड़ा कटिया पंडा बनिया सिर के चुकन लगे नरंकार की रेत मारी दादी मारी रात पै भगवान कृष्ण ने कहा सुनामे हम कि करिए घर तो पहुंच नहीं सकते जंगल का मौका है सुनामे ने कहा महाराज कोई आ दरख्त है बड़ा वड्डा इन्हें उत्ते चढ़ चलते रात इतने बिताने दिन होगा फिर तक एक दान के उत्ते भगवान कृष्ण जी पै गए दूजे उत्ते सुदाम भुख लगी सुदामे ने वो छोले वाली पोटली कटी सुदामा सोचन लगा मैंने जिस तरह मैनू भुख लगी है कृष्ण नू भी लगी होनी ते छोले छोड़े कृष्ण नू तो पता नहीं तो क्यों ना आप ही छक लेंगे भूख बड़ी जालम की तो सुदामे ने की किया छोलिया वाली पोटली खोली ते एक फटका मारे प्यारी सास संगत जिस वेले छोले दंदा तले आए ते सुदामे ने जिथे आवाज आई रात का समा जंगल का मौका टिकवी रात तो दूजे दान उत्ते बैठे भगवान कृष्ण ने किया सुदामिया कुछ खादा पे सुदामे ने छेती छेती मारा इतने पता की खाने मैं तो कुछ नहीं पिया भगवान भी चुप कर थोड़े समय के बाद सुदामे जिस वे दूसरा बका मारे रवादारी भगवान
भी कहने लगे भी सुनामी अभी खा रहे हैं। महाराज तो मुझे तो पता है इसे पता तो मेरी मां बैठी है मैंने कुछ देने वास्ते ऐसे गरीबों ना विरास न करे कर भगवान जी विद्युत कर कोई समय में बात प्यारी साल संगत किसी ने सुनाने में तीजा फटका मारे फिर आवाज आई भगवान जी कहने लगे सुनामी भावे मन से चाहे ना मन पर कुछ खा जरूर है मारे तो रुकी ना पता है भगवान जी कहने लगे सानू आवाज पी आई है दंदा की तो सुनामी ने कि हमारे तुझे बड़े खोल तुम पता नहीं मेरा शरीर जरा दुबला है ते बारिश हुई है ते शरीर भुखन लग गई है ते मेरा तो दंद से दंद पिया बजता है तुम्हें कहने मुझे कमरे उस वेले भगवान पिछले ने बचन कर दिता जाओ दलिद्री दलिद्र कहते कंगले नीवी जमीर जाओ दलिद्री तो पित्र प्रभाव कीता है क्योंकि वन के खाना संदगी दिखा के खाना शर्मिंदगी खो के खाना गंदगी जरा खो के ब्याह खाता है वह गंदगी खाता भगवान ने वह वचन किया पूरा है संदीपा ने की को पढ़ के विदेह भगवान कृष्ण जी तो द्वारका नगरी में मार्ग जा बने तो सुदामे ने कर सारी दुनिया का दलिद्र है कारोबारी सुशीला निके निके बच्चे खान को कुछ नहीं दिता एक दिन सुशीला ने किया सामी मैं सुनिया है कि भगवान कृष्ण थोड़े मित्र सुदामे ने किया आसान पढ़ना भगवान को क्यों नहीं जाते आप भुखे पर मरते जे भगवान कृष्ण वर्गा तो मित्र है नाले वो अवतार भी है नाले राजा महाराजा भी है उन्हें को क्यों नहीं जाते कुछ मिल जाएगा इस दिन चंगे मतीत हो जाए सुनामी ने कि अपना गांव वाली जब तक तेरी ठीक है पर मित्र को बदले शर्म ध्यान पर तेरी शर्म का भी वो अवतार भी

ते बक्ता करके जुग कोट गणेश के हाथ लखे हो जुग कोट गणेश के हाथ लखे हो काट पा

अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है वाहेगुरु अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत है अपीत है अबा है अगा है अमान है

मोहम्मद बिन तुगलक ने नामदेव नु पुछया, ऐ नामदेव मैं हिंदुस्तान दा बादशाह, तू मेरे कोलों डरदा नहीं, किदे भरोसे ते

उस गोपाल राय की सेवा करते ने अकुल निरंजन जिदी कोई कुल नहीं जेड़ा माया दे प्रभाव तो उत्ते है उस गोपाल राय की भगत लोग सेवा करते ने भगती करते ने ते ओदे कोलों भगत दान दीजे जांचे संत जन उस गोपाल दी सेवा करके ते भगत

लक्ष्मी कुवारी उस परमेश्वर दे घर लक्ष्मी कुवारी है। ओदे हुकम तो बगैर कोई लै नहीं सकदा, जे कोई लै भी लवेगा ते दुखी होवेगा।

शिव जी नु क्यों उचारना पिया। हिंदुस्तान दे बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक ने भगत नामदेव की शोभा सुन के नामदेव नु अपने दरबार च बुलाया ते बादशाह कहन लगा, ऐ नामदेव, मैं सुने अल्लाह तेरा

देव ने बाणी च बयान कीता कि बादशाह कहन लगा ऐ नामदेव ऐ गां मरी हुई पई है इस नु जिंदा कर दे जे गां जिंदा ना हुई ता मैं तेनू जानू मार देंगा। नामदेव जी बादशाह दे ख्याल ते अपनी विचार शब्द विच इस तरह

बड़ा क्या है पुत्र, ऐ मां जा, मैं तेरा पुत्र नहीं, ना तू मेरी मां है। मैं तेनू छड़ सकदा पर राम दा नाम नहीं छड़ सकदा। पिंड पड़े तो हर गुण गाए, पिंड क्या है शरीर नू, इस शरीर भावे खत्म हो जाए।

महादेव नु छड़ दे नामे सर पर सोना ले नामदेव दे बराबर तोल के सोना ले ले पर भगत नु कुछ ना कहे।

कैद खाने पा दिता गया, सत घड़िया का समा दिता, पर सत घड़िया बीत गई, गऊ हाली तक जिंदा नहीं हुई। भगत जी आप बयान करते हैं।

का नाम देव जी ने किया ऐ परमेश्वर, और कुछ ना कर बस गां जिंदा कर दे। परमेश्वर ने कृपा की थी ते मरी हुई गां जिंदा हो गई, वच्छे समेत ते नाले दूध दियां दो मटकियां भी भर गईं।

बादशाह ने खुश होके भगत नामदेव ने बहुत सारा सोना चांदी भेंट किया, पर नामदेव जी ने उस सारा सोना चांदी गरीबां च वंड दिता। आप तुर पए। बादशाह ने एक बड़ा कीमती दुशाला कह लो, सेज कह लो, बड़ा कीमती दुशाला सेज नामदेव वास्ते अपने दरबारियां नु दिती। बादशाह ने दरबारियां नु कहा, जिथे नामदेव जी बैठन ऐसे जा नामदेव नु भेट कर देनी, ते नाले मेरे वल्लों कहना कि बादशाह दी इच्छा है कि ऐसे जा किसे नु दान नहीं करनी, ए वछा के तुसा आप उत्ते बैठना है। नामदेव जी तुर पए, नाल बादशाह दे दरबारी तुर पए। नदी किनारे भगत नामदेव जी बैठे ने,

भगत नामदेव जी ने उस वक्त नदी किनारे बैठ के ये शब्द उचारिया, जे गुरु दयाल हो जाए मुरार कहंदे ने कृष्ण भगवान ता कृष्ण भगवान की प्राप्ति हो जाती, अगर गुरु दयाल हो जाए ता उतरे पार इंसान संसार सागर

छड़ देंदे। गुरु दयाल हो जाए हर पासे उन्हूं परमेश्वर दी जोत नजर आंदी। जे गुरु दयाल हो जाए ते मत्थे दे लेख जड़े ने ओ

पर जे गुरु दयाल हो जाए देहोरा फिरे देवरा कहते ने मंदिर ता ओ पूरे पत्थर दे बने हुए मंदिर घुमा दिंदा नामदेव जदो पंडता ने नीवी जादा समझ के मंदिर विचो कढ़िया सी ते नामदेव जी मंदिर दे पिछले पासे जाके बह गए सन ते परमेश्वर ने भगत बदले पूरा मंदिर घुमा दिता तो भगत जी कहंदे ने

उन बादशाह ने पूछा, भगत जी एक सेज ता मेरी है, ए बाकी सेजा कीमती किस दिया ने? ता नामदेव जी कहन लगे, बादशाह जदों कोई परमेश्वर दे नाम ते अपनी कमाई विचों कोई चीज दान कर दे, पेट कर दे दसां नूं आंदी फिरत विचों, ता ओ दान कई गुणा फल के उन्हों मिलदे। ए सारियां सेजां तैनू मिलनियां सन, पर तू दान करके शंका कीता, इस करके ए चीजां हुण तैनू नहीं मिलनियां। ता बादशाह उस वक्त हाथ जोड़ के कहन लगा, भगत जी मैं भी बादशाह हिंदुस्तान दा, सारे लोग मेरे को डरदे ने पर तुसी नहीं डरदे। उस वक्त भगत नामदेव जी ने मलार राग दे विच ए शब्द उचारिया, सेवी ले गोपाल राय अकुल निरंजन। है बादशाह तू दुनिया दा बादशाह आज है, कल खत्म हो जाएगा, पर जिड़ा साडा बादशाह है ओ परमेश्वर ओ गोपाल, ओ कदी खत्म नहीं होंदा, उन्नू कदी मौत नहीं आंदी। उसने दुनिया बनाई, खंड ब्रह्मांड बनाए ने,

उस परमेश्वर दे घर की है, भगत जी ने बयान किया। जांचे कर निकटवर्ती अर्जन, ध्रुव प्रहलाद अमरीक नारद नेजे, सिद्ध बुद्ध गण गंधर्व बानवे हेला, एते जी जांचे है करी, सर्व व्यापक अंतर अरि, प्रणमय नाम दियो तांची आन, सगल भगत जांचे निशान। ऐ बादशाह, ओ परमेश्वर, इतना बयांत है, ए जो मैं दसे है, ए ता कुछ भी नहीं, सब कुछ होता है, ओ बनान वाला है, प्रणमय नाम दियो तांची आन। नामदेव आखद है, ऐसे गोपाल राजे दी असी शरण विच हां, ते सारे भगत सारी दुनिया ओदा ओट ते आसरा लैंदी है। इस करके भाई, राजे हो ताकतवर हो ता मान ना करो, क्योंकि उस गोपाल राय तों कोई भी वड्डा नहीं।

प्राचीन अते प्रसिद्ध राग गुजरी भगती भाव दे गायन लई विशेष अनुकूल मन्या जांदा है। इस राग दी संपूर्ण रचना करुणा रस नाल ओत पोत होने कारण संगीतकार ने इस दी प्रकृति करुण मन्नी है। हर श्रद्धा हर प्यास इस दा तरला है। शौ नूं पौणा ही जीवन दा मकसद है। यही दर्शाया है गुजरी जात गवार जा सौ पाए अपना गुर कै शब्द विचार अन दिन हर जप जापना। सौ पौण लई तन मन अर्पो पूज चढ़ावो सब कुछ ही अर्पणा पैंदा है। इस राग विच ऋषभ गंधार अते धैवत कोमल लगदे हन। मध्यम तीबर है और पंचम वर्जत है। निषाद शुद्ध लगदा है। इसका बादी सुर धैवत अते समाधि रे है। गायन समा दिन दा दूजा पहर। निर्धारित राग गुजरी विच पहला शब्द श्रवण करो। गा रहे हैं भाई तेजपाल सिंह जी भाई सुरिंद्रपाल सिंह जी सिंह बंधु। शब्द दे बोल हैं ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारो। दूजा शब्द भाई निरंजन सिंह जी की आवाज विच श्रवण करो। शब्द है गुजरी जात गवार जा सौ पाए अपना। पहला शब्द ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारो।

प्यास लगी पानी दी पाल कीती एक खूह नजर आया उस खूह दे कोल जदों गए तां देखिया कि पहला भी कुछ लोग खलोते हुए पानी पानी कर रहे सन क्योंकि पानी बहुत नीवा सी खूह दे विचों ओ पानी कढ़ना बड़ा औखा सी। संत ज्ञानेश्वर अते नामदेव जी पहुंचे खूह दे कोल पानी देखिया बहुत डूंगा है बहुत नीवा है पानी कढ़न वास्ते कोई इन्नी रस्सी भी नहीं। ता संत ज्ञानेश्वर जेड़े के पहुंची होए महापुरुष सन अपनी शक्ति दे नाल खूह दे विच उतरे पानी पीता पानी फिर भर के शक्ति दे नाल खूह तो बाहर आए चेलिया नू प्याया कुछ लोकां नू भी प्याया ते नामदेव नू कहा नामदेव तू भी पानी पी लै। नामदेव जी कहन लगे मैं पानी नहीं पीना जेड़ा तुसी लेके आए हो। संत ज्ञानेश्वर कहन लगे फिर नामदेव तू भी शक्ति दा मालक है तू भी भगत है तेरे विच भी शक्ति है तू आप अपनी शक्ति दे नाल खूह दे विच जाके पानी पी के ते खूह दे बाहर आ जा। ए सुन के नामदेव जी कहन लगे संत ज्ञानेश्वर नू मैं पानी तां पीना है जे मेरा रमैया मैनू पानी पियावे नहीं तां मैं पानी नहीं पीना क्योंकि मैं ओदे नाल प्यार करना ते ओदा फर्ज बनदा है कि ओ साडी प्यास बुझावे। ए कह के नामदेव जी उसे खूह दे कोल बैठ गए हाथ विच खड़ताला।

एक कंड हेड़ा हुंदे ओदी आवाज सुन के हिरन जेड़ा है उस आवाज दे पिछे भजदा है ओ आवाज नाल प्यार करदा है ऐ परमेश्वर जिस तरह मारवाड़ दे लोक पानी नाल प्रीत करदे ने ओठ वेला नाल प्यार करदा है कुरंक हिरन जेड़ा है कंडेड़े दी आवाज नाल प्यार करदा है ऐसे

जिथे अंब लगा वे कोकल जा बैठदी अते खुशी दे नाल गान लग पैंदी ए। इसे तरह मेरे रमैया जिवें धरती पानी नाल प्यार करदी ए बरसात नाल, पवरा फुल दे नाल कोकल अंब

मान सरोवर हंसला हंस जेड़े ने मान सरोवर नाल प्रीत करदे ने मान सरोवर ते रहंदे ने भगत नामदेव जी बयान करदे ने चकवी को जैसे सूर बाल है चकवी जिस तरह सूर दे नाल

खीर बाल हा जिवें बच्चा खीर के दुध नू दुध दे नाल प्रीत करदा है चात्रक मुख जैसे जल तरा।

जिस तरह तू है इस तरह इस नामे दे मानवे च भी ऐ परमेश्वर तू है कै ऐ नामदेव भी तेरे नाल इन्ना प्यार करदा है जिवें होर साधक सिद्ध चाहते ने कि तेरे दर्शन होण।

क्योंकि गुरु दी लोड़ सी। कहन लगे मैं अमृत वेले उस रस्ते ते जाके लम्मा पै जावांगा जिस रस्ते तो स्वामी रामानंद रोज सवेरे अमृत वेले गंगा इशनान करन जांदे ने। रात पई पर कबीर साहब नू नींदर नहीं आ रही क्योंकि गुरु दी लोड़ है ते जिनू गुरु दी लोड़ होवे उनू दुनिया भुल जांदी है। दो गल्ला ने, या दुनिया खुश कर लीए या गुरु नू खुश कर ली। जे ता गुरु नू खुश करना है ते फिर दुनिया दा त्याग करना पवेगा। दुनिया दा त्याग घर बार छड़ के नहीं, घर बार तिया पुत्रा माया विच रहंदिया होया परमेश्वर नू याद करना, माया विच रहंदे होया माया दे उत्ते काबू पा के रखना, मोह माया तो उत्ते उठ के रहना, ए दुनिया दा त्याग हुंदा है। दुनिया छड़ के जंगलां विच जाना कोई त्याग नहीं। कबीर साहब कहन लगे मैनू गुरु दी लोड़ है। आप अधी रात हुई घरों उठे ते गंगा घाट

कबीर साहब नू गुरु दी लोड़ है, अद्धी रात घरों उठे गंगा घाट जा पहुंचे, जिहड़ियां पौड़ियां तो स्वामी रामानंद उतरिया करदे सन। कबीर साहब मूह सिर लवेट के उन्हां पौड़ियां ते जा के लम्मे पै गए। इस कथा नूं भाई गुरुदास जी ने अपनी पौड़ी दे विच बयान कीता है। आप स्वामी रामानंद बारे इउं अपनी पौड़ी विच लिखदे हन।

अमृत वेले उठ के जांदा गंगा नहावण ताई स्वामी रामानंद अमृत वेले उठ के रोजाना ही गंगा इशनान करने

बड़ी मस्ती विच राम राम कर दे तुरे आ रहे ने। गंगा दियां पौड़ियां उतरन लगे, देखे आ पौड़ियां दे विचकार कोई सुता होया है। रस्ता नहीं सी क्योंकि कबीर लम्मा पिया सी। स्वामी जी कोल होए अपने पैरां दी, स्वामी जी कोल होए अपने पैरां दी ठोकर लाई कबीर दे शरीर नू। ते कहंदे ने भांडे विच जेड़ी चीज पाई होवे ओही निकलदी। जे किसे भांडे विच दुध पाया है तां दुध ही निकलेगा। जे किसे भांडे विच शराब पाई है तां शराब निकलेगी। पर जेड़े महापुरुष ने इन्हां दे विच तां परमेश्वर वसदा है, परमेश्वर दा नाम वसदा है तां नाम ही निकलना। स्वामी रामानंद ने पैर दी ठोकर लाई कबीर दे शरीर नू, ते नाले किया उठ राम के राम कहो, ए सौण दा वेला नहीं, ए नाम जपण दा वेला है। भाई गुरदास जी आप बयान करदे ने।

ठोकर लाण दा ऐसा असर होया जिस तरह लोहा पारस नाल लग जावे उस वेले सोना बन जांदा है। इसे तरह ही कबीर साहब दे शरीर दे नाल स्वामी रामानंद दा पैर लगा ते लूलू दे विचों राम राम दी आवाज आन

ऐसा सुर हो गया स्वामी रमन दे पैर लगा के एक कहन दा के उठ राम के राम को पाए गुरुदास जी कहंदे ने राम कबीरे भेद ना पाई राम विच ते कबीर विच कोई फर्क ना रहा। इशनान करके स्वामी रामानंद चले गए। कुछ समय बाद कबीर साहब स्वामी रामानंद के आश्रम वाल तुर पाए। स्वामी रामानंद जदू इशनान करके जाते सन दरवाजा ढो के चौंकड़ा मार लेंदे सन और मन करके परमेश्वर नू इशनान कराया करदे सन। इशनान कराण अज भी बैठे मन करके कपड़े भी पवाए सिर ते ताज भी रखे आ मुकट कलगी भी रखी पर हार पाना भुल गए। कबीर साहब स्वामी रामानंद के दरवाजे के बाहर बैठे। उस पासे स्वामी रामानंद सिर ते मुकुट रख बैठे ता ख्याल आया कि मना हार ते गल विच पाया नहीं हार जो तक ना पावा पूजा पूरी नहीं होनी जे ता हार मुकुट ला के पावा ताई सोभा वाली गल नहीं मुकुट दे उत्तों हार पै नहीं सकता क्योंकि हार छोटा ए चिंता विच नहीं कि सिर ते सजाया मुकुट लाना ठीक नहीं ते मुकुट दे उत्तों हार पै नहीं सकता किवें करा ता कबीर साहब बाहर बैठे सन उन्हां जान लिया कि स्वामी रामानंद क्यों परेशान ने क्योंकि जिहड़े नाम जपदे ने उन्हां विच ते परमेश्वर विच भेद नहीं रहिंदा ओ एक दूसरे दे मना दियां जानदे ने ते कबीर साहब ने बाहरों कहा स्वामी जी हार जी मुकट तो नहीं पै रहा ते हार दी गंढ खोल के हार गल विच पा के फिर गंढ मार दियो। आवाज सुनी स्वामी रामानंद बड़े हैरान होए उठ के बुआ खोलिया बार कबीर साहब बैठे। स्वामी जी कहन लगे तू कौन है कबीर साहब कहन लगे मैं कबीर हां तुसा मैनू गुरु दीख्या दीती। स्वामी जी कहन लगे मैं ता तेनू गुरु दीख्या दीती नहीं अपना चेला बनाया नहीं। ता कबीर साहब कहन लगे स्वामी जी तुसी गंगा ते अमृत वेले इशनान करन गए मैं पौड़ियां ते लम्मा पिया सी तुसा अपना चरण मेरे शरीर नू लाया ते कहा सी उठ राम के राम को उदों दा मैं आप दा सेवक बने। ए सुन के ते स्वामी रामानंद कहन लगे कबीर तू सेवक नहीं तू ते मेरे नालों भी अगे चला गया है तेरे विच ते राम विच कोई फर्क नहीं रहा क्योंकि तू ते मेरे मन दी भी गल जान ली है। और स्वामी रामानंद जी दा एक शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है कत जाइए रे कर लागो रंग।

तीसरे भगत भगत धन्ना जिन्हां बारे भाई गुरदास जी अपनी पौड़ी विच आप बयान करते हैं।

ब्राह्मण कहन लगा जाओ तो नहीं है कोई मखौल ठाकर तेनू दे दे तेनू की पता कि मैं पूजा करी दी जा जाके गवां चार तना कहन लगा देख पंडता सीधी तरह ठाकुर दे दे नहीं था मैं दूसरी तरह लवांगा। ब्राह्मण कहन लगा जाट है इन्हें पिछा नहीं छड़ना कहन लगा चंगा तो ठहर मैं ठाकुर लेके आना एक गोल मोल पत्थर कपड़े विच लपेट के तन्ने नूं दिता अपना पिछा छड़ाने वास्ते पत्थर एक लपेट कर दे तन्ने नूं गैल छुड़ावे गैल अपना पिछा छुड़ाया ते लै ठाकुर नूं लै जा हुण तन्ना उस पत्थर नूं घर लै आया पहला इशनान कीता फिर ठाकुर नूं इशनान कराया चौंकी ते रखिया रोटी पकाई अते लस्सी रिड़की लस्सी रोटियां ठाकुर दे अगे रख के ते तन्ना हाथ जोड़ के बैठ गया ठाकुर नूं।

0: परमेश्वर नु रोटी खुआई तन्ने ने भी खा ले। परमेश्वर कहन लगे लै भाई तन्ने आ रोटी तो असी खा ली हुण दस तेन चाहिदा की है। तू याद कीता मैं आया हुण मंग तेन की चाहिदा। ता तन्ने ने हाथ जोड़ ले कहन लगा भगवान मैनू ए नहीं पता कि अरदास किवें करी दीए। लोक तेरी आरती करदे ने पर मैं तेरा आरता करना। आप जी बयान करदे ने भगत अन्ना जी अपनी बाणी विच आप
1: गोपाल तेरा आरता।
0: गोपाल कहंदे ने दुनिया नू पालन वाला परमेश्वर।

कोड़ी नुके ए भगवान पैरी सोहनी जुती पाई होवे सोहना सूट पाया होवे घर विच अनाज भी होवे गां ते मज भी होवे ते किधरे आना जाना पै जावे ते पैदल तुर के जांदा फिर आदमी चंगा नहीं लगता कपड़े चंगे पाए होन ते तुरिया जावे पैदल चंगा नहीं लगता आना जाना भी पैंदा है दूर इस करके कृपा कर एक ताजन तुरी चंगेरी एक सोहनी जी घोड़ी भी दे ताकि किधरे आना जाना होवे ता ओ सफर मैं

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

0: रत्नवा बारू भीत बनाई राजपद रत नहीं दिन चार तैसे ही सुख माया के उज्जो कहां गवा
1: अजनु समझ बिगड़िया ना अजू समझ।

0: मन मूर्ख अज हूने समझत सिख दे हारियो नी सिख दे हारियो नी
1: नानक पाण

मर्यादा पूरी हो गई। हुण तक महाराज गुरु बने रहे ते हुण आप जी दी वारी सिख बनन दी सी। आप बड़ी निम्रता नाल बोले, हे अकाल पुरख दे खालसा जीओ, तुसा सारी दुनिया नू अमृत दी दात बख्शनी है। सब तो पहला दास नू भी अमृत दी दात बख्श के गोविंद राय तो गोविंद सिंह बना लवो। भाई दया सिंह जी ने कहा, महाराज अमृत लेना है ता इस दा मुल भी देना पवेगा। असा सिर दे के अमृत प्राप्त कीता है, दसो आप इस बदले की दोगे। हजूर ने सिर झुका के कहा, प्यारे भाई दया सिंह जी, जे सिखा ने अमृत बदले सिर दिता है ता सिखा दा गुरु इस बदले सरबंस देवेगा।

0: गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खंडे बाटे दा अमृत तैयार करके पंजा प्यारियां नूं छकाया, उपरंत आप छकिया अते खालसा पंथ दी सिरजना करके सानू एक वखरा ही स्वरूप दे दिता, ताके सिख लखां विच कल्ला खड़ा होया भी दूरों ही नजर आवे। इसे करके अज असी बड़े मान नाल एक कह रहे हां, साडा मूह मुहांदरा वखरा है, साडा रूप वखरा, साडा रंग वखरा, किसे कौम दे नाल नहीं मेल खांदा, तुरिया आउंदा है साडा
1: पर संग वखरा,
0: साडी आत्मा दे लक्षण वखरे ने, साडे जिस्म दा हर एक अंग वखरा, साडी मौत जहान तो वखरी है, साडा जिंदगी जीउण दा
1: ढंग वखरा।
0: गुरु प्यारी साध संगत जी, अकाल अकैडमी गुरुद्वारा बड़ू साहिब जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश दियां बीबियां दे ढाडी जथे दी इन्नी सेवा प्रवान करो, बुलाओ फतेह ते आखो गज के वाह।

हे मेरे मालिक, सब तेरे कोलों मंग रहे ते मंगिया उथों ही जांदा है जिथों दात मिलदी हो, जिथों मंग पूरी हो जाए। इसलिए सब तेरे कोलों मंग रहे ने, पर गल कमाल दिए मंगल वाले बहुतात विच हन जिन्हां दी कोई गिनती नहीं, पर देन वाला इको ही। ते हर मंगते दी मंग वखरी है, ए नहीं कोई कोई मंगदा होवे। जिन्ने मंगण वाले ओनिया ही उन्हां दियां मंगा, पर हे परमात्मा तू देन वाला एक है। कुर्बान हां तेथों जो तू सब दियां मंगा कबूल कर रहे है। हुण गल मंगण दी चली है ते साहब कहिंदे ने आ हुण विचार इस गल दी भी कर ली है, परमात्मा देण तो इनकार ते नहीं करदा, पर असी मंगणा किवें है ते मंगणा की है।

सो केसो कुकिए ना सोइए आसार रात दिवस के कुकने कबू को सुने पुकार कड़ी ते पुकार सुनेगा ना बस मंगता मंगी जाए मंग बार बार दोहराई जाए किवे मंगे बबीहे दी थाई उस चातक दी नहीं आई जिड़ा बार बार प्यू प्यू करदा रही मंगी जांदा है ना दिन विंद है ना रात विंद है वो पुकारा करी जांदा है बबीहा बोल रहा सी किसी ने आवाज मारी ते आखिया बबीहा क्यों प्या बोलना है कहना एक बूंद चाहिए एक बूंद ली बोल रही मंगती का पहला गुण है जी कहने संसार विच कितना बड़ा समुद्र है नदियां नाले ने सागर हन तालाब हन वो कितों भी एक घुट पानी का पी के अपनी प्यास बुझा ले कहने नहीं ए पानी मेरी प्यास नहीं बुझा सकते मैनू तो एक बूंद चाहिए एक बूंद वास्ते मैं इतना प्यू प्यू कर रही हूं ख्याल करियो जी एक बूंद जल कारण चातक दुख पावे एक बूंद वास्ते वो किन्ना बोल ले कहना जा जाके सौ आप भी सौ ते मैनू भी सौन दे क्यों नींद हराम कर रहे बबीहा नहीं मुड़िया जी बबीहा बोलता जा रहे आखिर की होया वो एक लिव नाल बोल रहा सी एक कोलो मंग रहा सी बाणी विच फैसला है जी

कह रहे हैं नहीं है, चला जा। कहना नहीं, कुछ ते दे के तोर, कुछ ते मेरी चोली पा, मैं तेरे को लाए बगैर नहीं जाना। इना ठीठ बनदा है कई बार मालिक किनिया गल्लां करदा, देन वाला बहुत गल्लां करदा है पर वो बर्दाश्त करे, हर गल नूं सुने, क्योंकि ठीठ बनदा। जब तक ठीठ नहीं बनदा तद तक दात नहीं मिलनी। पावो दान ठीठ होए मन, ठीठ बन के मंगी जा मंगी जा मंगी जा। हुण गल आ गई तीसरे गुण दी। तीसरा गुण है जी मंगता डर ना छड़े। किवें ताटी दर प्रभ मंगना दर कदे ना छोड़े। दर फड़ के बह जाए ते दर ना छड़े। हे मालिक मंग रहे तीठ बन गए, दर नहीं छड़ना, दात लैके जान। पर हुंदा की है, असी सिर्फ मंगना ते जान लैने, मंगना आउंदा नहीं। मंगना की है ए भी पता नहीं, मंगना किवें है ए भी नहीं जानदे। ते जिहड़े मंगते दे गुण ने ओह ते साडे अंदर है ही कोई नहीं। जे होवे च किसी अंदर एक आ जांदा है, लो जी मंगना है, मंगी जांदा। कुछ समा मंगिया नहीं मलिया चला गया। किसे विच दूजा गुण आ जांदा है, तीठ बन के बह जांदा है। इतना टीठ बन गया कि मंगी जा रहे हैं नहीं मिले, आओ भी चला गया। तीसरा गुण सी ग्रहण नहीं करते कि जेड़ा बड़ा जरूरी है। तीसरा गुण है मंगता दर ना छड़े, क्योंकि कई बार हुंदा कि असी मंगी जाने टीठ भी बन जाने, जो दात लैण दा समा आउंदा उदों असी दर छड़ के